0: Awaaz FM is supporting local radio.
1: Local radio.
0: Communities making waves, turning the tide on isolation.
2: Hello, there's a big fire in the Enter Garden Centre in Hammersworth.
3: I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: Hello, there's a big fire in the Enter Garden Centre in Hammersworth.
3: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
8: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
9: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
10: The technical issues is me. Any issues we have technically is always me. I'm the man who has to press the buttons.
11: Hello, I'm Sapia Cole. You are listening to Awaaz FM.
12: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
13: Radio. The medium that's now large.
14: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
15: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
16: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
17: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. find out more, just search South Hampshire College Group.
6: जब आप
18: अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
19: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
20: अस्सलाम वालेकुम।
19: वालेकुम सलाम।
20: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
19: हाँ जी शुक्रिया।
20: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुँचाया है कि एक लिसनर्स को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से। मेहरबानी तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ। बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और बनता है।
19: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
20: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
19: थैंक यू वेरी मच।
20: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज़ एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे। बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियाँ खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी बखैर।
19: थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।
20: आई लव यू।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
1: Hello, this is Roxana Simro. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaaz hai pehchan. Thank you, Ali.
0: Southampton's Community Radio, Hours FM.
2: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
3: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
4: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre. I can see a massive black plume of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
4: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
8: You are listening to Awaaz FM, the largest ethnic community radio station in Hampshire, broadcasting on 99.8 FM and DAB Channel 70. Everyone's talking about it.

0: का रेडियो आपके शहर में आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Ours FM.
2: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search Southampshire College Group.
3: Hello, there's a big fire in the Enfield Garden Centre in Armadale.
4: I can see a massive black plume of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
3: Hello, there's a big fire in the Enfield Garden Centre in Armadale.
4: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
6: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
7: All right, no problem. We're on the way.
8: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
9: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
10: साउथहैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेरो नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेरो नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, औस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा।
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre, enormously.
2: I can see a massive black column of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं, तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर, हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं, बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।
7: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
8: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
9: See, ye Abbas Hassan bol rahe hain. Aap Awaz FM sunte rahiye.

0: कि मुझ पर कोई आसान न करना।
1: पिक्चर आ रही है ना,
2: कौन सी?
1: बॉडीगार्ड। उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
1: तेरी।
3: अरे
0: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना।

0: सुना है तेरे बारे में।
1: बंदूक की ताकत से कहीं बड़ी राजनीतिक ताकत है।
0: हाथी अगर चींटी के ऊपर पैर रख दे तो चींटी मरता नहीं, उसे मसलना पड़ता है। आज से तुम्हारा प्रमोशन किया।

0: You're listening to Hours FM. Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
1: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre. Now I'm
3: starting to see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
8: You are listening to Awaz FM, the largest ethnic community radio station in Hampshire, broadcasting on 99.8 FM and DAB Channel 70. Everyone's talking about it.

0: This is Natalie DeLuccio and Sunte Rahihe, Awaz FM.
1: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre.
3: I can see a massive black column of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
3: I can see a massive black column of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।
8: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
9: Bonjour, c'est Abbas Hassan et vous écoutez bien Awaz FM.

0: अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, औस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें
1: मिलूंगा।
2: जब अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जाने बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसानात से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
3: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
4: All right, no problem. We're on the way.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
6: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
7: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
8: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज FM.

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Ours FM.

0: This is your host from Norfolk, Alex Aller, on a Waz Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in. Happy Friday on a Waz, 99.8 FM. Call me on our landline, 02381 9800 72. Finish your Friday with me, Alex.
1: Hello, there's a big fire in the end of Garden Center in Hammersley.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: Alright, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: Alright, no problem. We're on the way.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
8: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
9: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into Awaz and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.

0: मसीह यीशु में आप सबको वेलकम करते हैं। खुदावंत का बहुत शुक्र है, उसने आज हमें एक और मौका दिया है कि खुदावंत के प्यार को आपके साथ बांट सकें। और मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आज उन सबको हम वेलकम करते हैं। और ये खुदा का हुक्म है कि एक दूसरे से प्यार रखो, एक दूसरे से मिल जुलते रहो और एक दूसरे की खिदमत करते रहो। ये खुदावंत ने हमको हुक्म दिया है और हम उसके हुक्म को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। खुदावंत आप सबको बरकत दे। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले रॉबर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि इस पूरे प्रोग्राम को खुदावंत के हाथों में दें ताकि कोई ऐसी बात इस प्रोग्राम में ना हो जो खुदावंत हमारे यीशु को पसंद नहीं है। तो रॉबी भाई आप दुआ करें।
1: खुदावंत दिल की गहराइयों से इतना शुक्र करते हैं खुदावंत जी, हम सबको पूरी टीम को मौका मिला के तेरे जलाल को जाहिर करें। हमारी सबसे पहली दुआ यही है खुदावंत कि हमें सबको पाक रूह के इख्तियार में कर, पाक रूह की जो ताकत है, शक्ति है, कुदरत है, उसके सबको हवाले कर। हमारी जुबान और नबों पे खुदावंत तेरा प्यारा हो ताकि कोई भी हमारे मुंह से गलत बात ना निकले जिससे सुनने वालों को किसी को भी ठेस पहुंचे। जो कुछ निकले वो सच्चाई हो। सच्चाई को लोग कुछ भी कहें, हम वो बदल नहीं सकते क्योंकि वो सच्चाई खुदा की तरफ से आई है, क्योंकि खुदा का कलाम पाक रूह की ताकत से लिखा गया है। खुदावंद हमारी सबकी दिली दुआ है कि सबकी मदद कर, हम जो कुछ करें खुदावंद मोहब्बत से करें और मोहब्बत से बोल रहे ताकि इस प्रोग्राम का जो हकीकी मकसद है वो पूरा हो। हर एक बहन भाई को मैं तेरे हवाले करता हूँ और खुदावंद हम गीतों के जरिए, कलाम के पढ़े जाने के जरिए से हमारी दुआ जो बोली जाए, जो कुछ हम अब बोले खुदावंद लोग बड़े गौर से सुने। हम फिर एक बार रेडियो आवाज के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसके वसीले से ये खिदमत का काम चल रहा है। और खुदावंद जो भी उनकी बिजनेस से जरूरियात हैं खुदावंद तो पूरी कर और ये रेडियो प्रोग्राम चलता रहे। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुनो, कबूल कर ले खुदावंद। हम तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो कबूल कर ले। आमीन
0: आमीन। आइए टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। हे लोगो आओ सब मिलकर गाएं यीशु की जय। यीशु की जय हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। उसका नाम सब नामों से ऊंचा है और हम उसकी प्रसिद्ध और सिताइश के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आइए उसकी वडियाई करें।

0: आइए कलाम मुकद्दस की तलावत सुनते हैं, और उसके लिए मैं जरीना से दरख्वास्त करूंगी कि उर्दू जबान में खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तलावत करें।
1: पाक कलाम का जो हिस्सा आज हम पढ़ेंगे वो है पालूस रसूल का पहला खत क्रंथी की कलीसिया के नाम, उसका 13वां बाब। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं, और अगर मुझे नबूत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद अपने पाक नाम के पढ़ जाने पर बरकत दे। आमीन
0: आमीन। खुदावंद की सिदाइश के लिए और उसके नाम की शान के लिए मैं एक नज़म आपके लिए पढ़ने वाली हूँ, तो गौर कीजिए और इंजॉय भी कीजिए। मेरा यसु है खुदा, मेरी सुनता है दुआ। मेरा यसु है खुदा, मेरी सुनता है दुआ, मुआफ करता है गुना, मुझको देता है शिफा। मेरा यसु है खुदा, उसका रुतबा है जलाली, उसकी शान है नराली, यसु दुनिया का वाली, हमसे करता है वफा। मेरा यसु है खुदा, शाफी दुनिया में है आया, अपना प्यार है दिखाया, शाफी दुनिया में है आया, अपना प्यार है दिखाया, खून यसु ने बहाया, सूली पर है वो चढ़ा। मेरा यसु है खुदा, यसु दुनिया का है शाफी, देता सबको है वो मुआफी, यसु दुनिया का है शाफी, देता सबको है वो मुआफी, उसकी कुर्बानी है काफी, मुआफ करता है सजा, उसकी कुर्बानी है काफी, मुआफ करता है सजा। मेरा यसु है खुदा, उसका प्यार है निराला, हर कोई उसका है मतवाला, उसका प्यार है निराला, हर कोई उसका है मतवाला, हमको पाप से निकाला, दुख से करता है रिहा। मेरा यसु है खुदा। बहुत शुक्रिया।
2: आइए एक बहुत ही प्यारा गीत सुनते हैं, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यसु में बने रहो, रू में गाओ, रू में झूमो, यसु में बने रहो।

0: अभी हम कलाम मुकद्दस की तलावत जो हमने उर्दू जुबान में सुनी थी उसको हम पंजाबी में भी सुनेंगे, और उसके लिए डैनियल हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और आइए उनसे कलाम मुकद्दस की तलावत सुनते हैं।
1: मैं पवित्र बाइबल चों पौलुस ग्रंथियों दे विश्वास संगत नो पहला पत्थर उदा 13 बाब उदी पहली आयत नो 13 आयत तक पंजाबी च पढ़ांगा। हुण मैं तुहानू सब तो उत्तम राह दसदा हाँ, बेशक मैं मनुखा अते स्वर्ग दूतां दियां बोलियां भी क्यों ना बोला, पर जेकर मेरे विच प्यार नहीं है तो मैं एक ठन ठन करदे होए टल जां छन छन करदे होए छैणे दी तरह हाँ। बेशक मेरे कोल अग्नि वाक करन दी दात, सब गुप्त भेतां दा ज्ञान अते सब तरह दी समझ क्यों ना होवे, इथों तक कि पहाड़ां नूं हिला देण वाला विश्वास भी क्यों ना होवे, पर जेकर मेरे विच प्यार नहीं है तां मैं कुछ भी नहीं हाँ। बेशक मैं अपना सारा धन माल पुन दान विच क्यों ना वंड देवां, इथों तक कि अपने शरीर नूं बालन दे लई दे देवां, पर जेकर मेरे विच प्यार नहीं है तां मैनूं इस सब तों कोई लाभ नहीं है। प्यार सहनशील अते दयालु है, प्यार इरखालू नहीं, हंकारी नहीं अते हट्टी नहीं, प्यार बुरा वर्ताव नहीं करता, अपना लाभ नहीं देखता, चिड़दा नहीं अते बुराई तों प्रसन्न नहीं हुंदा, सगो सच्चाई तों प्रसन्न हुंदा है। प्यार सब गल्लां सहार लैंदा, सब गल्लां दा विश्वास करदा, सब गल्लां ते आशा रखदा अते सब गल्लां चल लैंदा है। प्यार दा कोई अंत नहीं है, अग्नि वाक होणगे तां उहनां दा अंत हो जावेगा, वख वख बोलियां होणगियां तां उह खत्म हो जाणगियां, ज्ञान होवेगा तो वो व्यर्थ हो जावेगा, क्योंकि साडा ज्ञान अधूरा अते साडा अगमी वाक अपूरन है, पर जदों पूरन आवेगा तां अपूरनता अपने आप खत्म हो जावेगी। जदों मैं बच्चा सां तो बच्चे दी तरह बोलदा सोचदा अते बहस करदा सां, पर हुण जदों के मैं पूरन मनुख बन गया हां ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ
0: ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਔਰ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਏ ਯਸੂ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਲਾਏ ਯਸੂ ਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਯਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਹਮੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਜੋ ਕਾਮ ਕੀਏ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਲੀਏ, ਹਮੇ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਹਮੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਗੁਨਾਹੋਂ ਸੇ ਹਮੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲੀਏ ਖੁਦਾ ਯਸੂ ਸਲੀਬ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਜੀ ਉਠੇ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਨਜਾਤ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਨਜਾਤ ਕੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇਂ ਆਏ ਔਰ ਵੋ ਨਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜੋ ਵੋ ਆਜ ਹਮਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।

दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ नशरियात हैं जो आपको बताई देती हूँ। संडे की इबादत के लिए 10:30 बजे इबादत शुरू होती है। आप भी आएं और इस मौका से फ़ायदा उठाएं, इबादत में हिस्सा लें, खुदा उनसे बरकतें पाएं, क्योंकि वो आज हम सबको बरकतें देना चाहता है। अब वक्त हुआ चाहता है कि खुदा उनके सामने अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी अर्जें और मुनरतें पेश करें। ऐ खुदावंद रहीम और करीम आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं कि तू हमारा बादशाह है, तू सजदे और सितायश और परस्तिश के लायक है। खुदावंद, तेरा शुक्र है तूने हमें ये भी हक दे दिया है कि हम तुझे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं और अपनी जरूरतें, अपनी खुशियाँ, अपनी हर बात तेरे सामने ला सकते हैं। और खुदावंद, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे पास हमारे लिए हर वक्त वक्त मुकर्रर होता है और तू हमारे लिए वक्त निकालता है और हमारी दुआओं को सुनता है। खुदा बाप, आज के प्रोग्राम के लिए हम तेरा तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि शुरू से लेकर अब तक तू हमारा हामी मददगार रहा, जो गीत गाए तेरी बरसिश के लिए। खुदा, वो तेरे हजूर में कबूल हो। जो कलाम की बातें कलाम में से सुना है खुदा, वो हमारे दिलों में घर घर जाए। और खुदा आगे दुआ मांगते हैं कि जब पादरी साहब इस कलाम को पेश करने वाले हैं तफसील से, तो खुदा अपने रूह का मसा दे ताकि जो कुछ भी वो बोले खुदा वो तेरे रूह की मदद से हो। और खुदावंद, हम तुझसे इल्तजा करते हैं कि तू कंटिन्यूसली हमें अपने पनाह में महफूज रख, हमारा साथ दे। खुदावंद, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं और भटक जाते हैं, लेकिन खुदावंद तेरा प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। खुदावंद, हमेशा तू हमसे प्यार करता रहता है। और खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसने खून बहाकर हमें गुनाहों से आजादी दे दी है। हम अपने नहीं बल्कि तेरे हो गए, तूने हमें कीमती खून से खरीद दिया है। खुदा, हम तो हमारी मदद करके तेरे साथ साथ चलते रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। खुदा बाप, इस वक्त मैं उन बीमारों के लिए दुआ मांगती हूँ जो चाहे वो घरों में हैं, चाहे अस्पतालों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं। खुदा, उन अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा, उनके ईमान के मुताबिक उनको शिफा दे ताकि जब वो शिफा पा जाए तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। और खुदावंद, इसी तरह मैं उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो अफसरदा हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। खुदावंद, उनको तेरी इत्मीनान और तेरी तसल्ली चाहिए खुदावंद, क्योंकि तू ही तसल्ली का सरचश्मा है। उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, उनकी जरूरतों को अपने इलाही खजाना से पूरा कर। खुदावंद, हम तेरे सामने सरनगु होते हैं और तुझसे इस बात की इल्तजा करते हैं कि खुदावंद, तू इस लोगों के दिलों में नफरत की जगह तेरा प्यार उनके दिलों में हो, ताकि खुदा वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रह सकें। खुदा, तू सब कुछ कर सकता है, इसीलिए हम तेरे सामने सरनगु होते हैं और तुझसे मांगते हैं, क्योंकि तू मुआफ करने में सच्चा और आदिल बाप है। खुदा, हम रेडियो के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तूने हमें दिया है कि हम तेरे प्यार को दूसरे लोगों के साथ बांट सकें। खुदा, उनकी बड़ी मददगार जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, चाहे क्रिश्चियन प्रोग्राम है चाहे और प्रेजेंटर है, खुदावंद हर एक की मदद कर ताकि जो भी इस रेडियो पर प्रोग्राम आता है खुदावंद बाप, वो दूसरों की बेहतरी और बहबूदी के लिए हो। खुदावंद, आवास क्रिश्चियन टीम के लिए भी मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि कितनी मेहनत से इस प्रोग्राम को तैयार करते हैं। और खुदावंद, उनके लिए दुआ मांगती हूँ जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। खुदावंद, उनकी मदद कर के अपने रियली दिलों से खुदावंद इस प्रोग्राम को सुने, और खुदावंद जो तू आज उनसे कहना चाहता है वो तेरी आवाज को सुनकर खुदा हम तेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ने वाले हैं। खुदा, हम तेरा बहुत बहुत शुक्र करते हैं और खुदा हमने जो मांग लिया है इसी मान से मांगा है कि तू हमें देगा, और अगर कुछ मांगना भूल गए हैं तो वो भी हमें हमारी जरूरत के मुताबिक अता फरमा। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा, हम यीशु मसीह के मुकद्दस और जलाली नाम में मैं सब कुछ मांग लेती हूँ, आमेन। हम एक गीत सुनते हैं, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंत की शिफा आती है, खुदावंत की शिफा आती है। खुदावंत का पाक रूह हम सबको हदायत दे और हमारी मदद करे और हमें अपने साथ साथ चलने की तौफीक दे। बहुत ही प्यारा गीत है, तो आइए सुनते हैं।

0: इस प्रोग्राम को दुआ के जरिए से खत्म करें। जी रॉबर्ट।
1: खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज सारे प्रोग्राम के लिए, खुदावन पाक रू की हजूरी के लिए, पाक रू की मदद के लिए, जिसके बगैर ये काम नहीं हो सकता था। हम शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए। हमारी दुआ है कि लोग उस पैगाम को अच्छी तरह समझें और रुजू लाएं, क्योंकि खुदावंद की किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। तो चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नबूत पहुंचे और आने वाले गजब से बच जाए। हमारी दिली दुआ है कि आज इस प्रोग्राम से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद फिर एक बार है पूरी टीम के लिए हमारी दुआ है, हमें खुदावंद और भी इस प्रोग्राम में दिलचस्पी और इसमें खो जाने की भूख और प्यास से, कि जब हम आते हैं तो खुदावंद हमारे दिल में रूहानी भूख और प्यास हो, क्योंकि ये काम जो कुछ कर रहे हैं हम खुदावंद तेरी ही मदद से कर रहे हैं। फिर शुक्र करते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए और जो भी दुआएं हुई हैं लोगों की जिस्मानी और रूहानी शफा के लिए, उसके लिए भी खास दुआ है कि लोग जिंदा खुदा की शफा को हासिल करें और ईमानों में तरक्की करें। फिर एक बार मैं दुआ करता हूँ रेडियो आवाज के लिए, खुदावंद जिसकी मदद से ये सब काम हो रहा है, सबको ब्लेस कर खुदावंद। मैं मांगता हूँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम से सुनो कबूल कर ले, आमीन।
2: आमीन। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा और खुदावंद ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर आपसे इसी जगह इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। आइए आखिरी जबूर सुनते हैं। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वडियाई तेरी करांगा, मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। आइए खुदावंद के मुबारक नाम को जलाल देते हैं और उसके तारीफ में ये जबूर सुनते हैं। इसके बाद खुदा हाफिज़। God bless you all.

0: From the heart of Southampton, reaching out to the community, this is Ours FM 99.8.
1: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
2: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
3: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre.
4: I can see a massive black plume of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
6: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
7: All right, no problem. We're on the way.
8: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Ours FM.
9: Hey Ryan, should we run the song before we hit the stage, Cookie?
10: I think we should. Let's do it.
9: Let's do it, man.
10: Icky, chuck it in, bro.
9: Chuck it in, bro.
10: I got, bro.

0: here, Awaaz FM on 99.8.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@ourzfm.co.uk.
5: After all the hullabaloo, you know you need a break, and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
6: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
7: चलते हैं पाकिस्तान लाइन पर हैं अजमल शोबी.
8: अस्सलाम वालेकुम.
7: वालेकुम सलाम.
8: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
7: हां जी शुक्रिया.
8: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से. और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से. मेहरबानी तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ. बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ. बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं. तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है. जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यकजा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है और बनता है.
7: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है.
8: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को.
7: थैंक यू वेरी मच.
8: बस थैंक यू वेरी मच. और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा. और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला. और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे. इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे. बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं. तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिंदगी बखैर.
7: थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.
8: आई लव यू ऑल.

0: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in
2: Hammersley. I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
2: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
8: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Awaz FM.

0: Indian,
1: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
0: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
3: All right, no problem. We're on the way.
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
5: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
6: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
7: New jingle, it's the Behind the Mic Sports Show. Come and listen, 1 to 3, every Monday. Mm-hmm.

0: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper, every Monday at 8 a.m, only on Hours FM.
1: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
2: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search Southampshire College Group.
3: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
4: I can see a massive black column of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
1: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
8: Hello, this is Rukhsana Simro. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaaz se pehchan. Thank you, Ali.
0: Southampton's Community Radio, Hours FM.

0: Cobbett Road Library is now open to the public. The library is the perfect place for a quiet read, family activities, children's day out, borrowing your favourite book to take home, or simply to search online for jobs. Visit the brand new library at Cobbett Road, Bitton Park, Southampton. On FM 99.8, DAB, on your smart speaker, and online around the world. Hours FM News.
1: Keir Starmer is meeting the family of murdered student Henry Novak, whose treatment by police has triggered a political row. The private meeting is taking place in Downing Street this afternoon. Meanwhile, the Prime Minister is urging politicians to listen to Novak's family's calls, not to use the case to cause disturbances. It comes as he's accused Elon Musk of trying to whip up division in the UK over the murder.
2: It's how we conduct ourselves now that matters, and always remembering what Henry's family are saying, which is, please don't use this to whip up division. It's incredible. They want others never to have to go through this.
1: Next, hundreds of women with hard-to-treat ovarian cancer could benefit from a new life-extending drug on the NHS from today. It's the first new addition to NHS treatment in over 20 years. And drawings created by John Lennon for what some believe was the world's first rock music video have gone on display in a museum. You can see them at Liverpool's Beatles Museum. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tinlita Sims.
3: Radio Works.
4: This global running day, figures from Garmin show nearly two-thirds of Brits now identify as runners while reporting improvements to physical and mental health. Here's former Team GB Olympic runner Ewan Thomas.
5: Runners are lacing up to boost their mood, and it's working. The data shows runners recording lower stress and higher sleep scores than non-runners, and more people want in on the action, as running is more popular now than ever. Smartwatches and apps are helping power the rise of running, so much so that 43% wouldn't run if they couldn't track it.
6: Would you like to take up Tai Chi? Tai Chi classes are available at Cobbett Road Hub and Library with Charlie, and you can park on Cobbett Road or nearby at Bitton Station. For more information, contact Cobbett Road Hub and Library.
0: 99.8 FM and online around the world and on digital DAB radio in South Hampshire. That was Southampton's Hours FM News.
7: Adab, namaskar, satyakar, khemcho. शामिन आप हमारा प्रोग्राम जिसका नाम एक बार फिर शेर नगमा है सुनना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपका होस्ट जेरी और मेरे साथ स्टूडियो में है अली बेग साहब हमारे हेडमास्टर जो आवाज़ रेडियो साउथहैम्पटन के डायरेक्टर भी हैं। और शामिन अभी हमारे शहर में हम एक बहुत ही हादसा हुआ अफसोस भरा हादसा हुआ है आप सबको मालूम है और उसके लिए हम आवाज़ रेडियो की टीम और हम सब उन सब के साथ जो इस हादसे से इफेक्ट हुए हैं अपना अफसोस जाहिर करते हैं और हमारी गुजारिश है उन सब से और शहर की सारी आवाम से कि इस दुख की घड़ी में कम्युनल हार्मनी बनाए रखें एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके चले और जो लॉ एनफोर्सिंग फोर्सेस हैं उनका हर काम में उनका साथ दे उनके काम में रुकावट ना बने। इसी पैगाम के साथ अली बेग साहब आप कुछ कहना चाहेंगे?
8: जी ये हादसा जो है ये बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ है हमारे शहर में ऐसा पहले कहीं नहीं दिखा इस तरह का
7: मेरी याद में तो हाँ नहीं है सब कुछ
8: तो एक बहुत ही अफसोसनाक है और सैड ये हादसा हुआ है लेकिन इसमें यह है कि जो जिन लोगों ने यह किया है उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और एक प्रोसेस चल रहा है
7: कानून अपना काम कर रहा है
8: तो जितने भी कम्युनिटी लीडर्स हैं और काउंसिल और पुलिस जो है वो उनका सबका बयान एक ही है कि कम्युनिटी को इकट्ठा रहना चाहिए कीप इन हार्मनी लुक आउट फॉर ईच अदर एंड अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र आए तो फौरी तौर पे जो है वो पुलिस को कॉल कीजिए 999, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है कि जो कुछ हुआ है तो उसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन है, या फिर कुछ वीडियोस आपने बनाई है सोशल मीडिया में शेयर मत करें, पुलिस वालों के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनको इसकी ज़रूरत हो तो वो इसमें इसको यूज़ कर सकें। तो इसके अलावा ये भी मैं अपने सामिंग को बता दूं कि कल यानी कि फ्राइडे जुमे वाले दिन शाम 5 बजे हमारे स्टूडियो में कुछ हमारे कम्युनिटी के लीडर्स भी आएंगे, और हमारे लोकल एमपी जो है सतवीर कौर वो भी आएगी, और यहाँ आकर तो अपने कम्युनिटी के लिए एक ख़ास तौर पे मैसेज भी देगी। तो अपने लिसनर्स को जो है वो ये दावत देता हूँ कि कल शाम को 5 बजे ज़रूर सुने कि हमारे कम्युनिटी लीडर्स और एमपी जो है वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर
7: जी, आप भी सामिन आप भी अपना रेडियो ऑन करना ना भूलें, और 5 बजे ये प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा
8: जी,
7: और जो भी मैसेज हमारे सोसाइटी के जो मोतबर लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो जो मैसेज देना चाहेंगे उनको ज़रूर सुनिएगा
8: जी।
7: तो
8: आज का प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का प्रोग्राम, और एक बार फिर शेरो नगमा। तो एक बार अपने जो लिसनर्स हैं उनको बता दूं कि इस प्रोग्राम में अगर आप भी शामिल होना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा स्टूडियो का नंबर 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 07786914400। जैरी साहब इधर बैठे हैं तो हमारे लिए कुछ चुटले लेकर आए
7: ये होता है कि जैसे हम हर बार कहते हैं कि मियाँ बीबी का जो रिश्ता है
8: जी
7: एक बहुत पाक रिश्ता होता है, जो फैमिली होती
8: जी
7: है, पर उसमें कुछ तजर्बात ऐसे होते हैं जिसमें अपने आप हंसी निकल जाती है, कुछ चुलबुली बातें या कुछ ऐसा होता है कि जैसे किसी शायर ने कहा है कि दिल्ली की तमन्ना है कि तुझे अपनी पलकों पर बिठाऊं।
8: सही है,
7: दिल की तमन्ना है कि तुझे अपनी पलकों पर बिठाऊं, पर तू 72 किलो की है, ये दिल को कैसे समझाऊं।
8: सही है,
7: दिल की तमन्ना है कि तुझे अपनी पलकों पर बिठाऊं, पर तू 72 किलो की है, दिल को कैसे समझाऊं।
8: ठीक है।
7: और एक और ऐसे जुमला है कि परफेक्ट मियां बीवी की जोड़ी वही है जिसमें शौहर अपनी बीवी को उदास ना देख सके और बीवी शौहर को खुश।
8: बाप में दम है
7: जी। तो बकौल शायर कि उम्र का रास्ता ढलान पर है, उम्र का रास्ता
8: जी
7: ढलान पर है, हौसला फिर भी आसमान पर है।
8: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
7: हमें कभी अपने जो हौसले हैं वो पस्त नहीं होने चाहिए,
8: नहीं होने चाहिए,
7: हमेशा परिंदों की
8: उड़ान में
7: देखना चाहिए।
8: बिल्कुल सही है
7: कि परिंदे कितनी ऊंची उड़ान उड़ते हैं और वापस फिर वही अपने घरौंदे में आते हैं। तो इसके साथ मेरे सामने इंतखाब है शकील आजमी साहब का
8: जी,
7: और उससे पहले महशर अफरीदी का एक शेर है
8: जी
7: कि अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपने
8: खालीपन
7: को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया।
8: वाह वाह, बहुत खूब।
7: अब तो मुझको मेरे हाल पे जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया।
8: अरे वाह जी वाह।
7: तो सामिन पेश है शकील आजमी का इंतखाब कुछ इस तरह। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं तकदीर बताने वाले।
8: वाह,
7: अब मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर
8: जी,
7: अब मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले।
8: वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बात सही है।
7: जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले।
8: बेशक बेशक,
7: शुक्रिया जी। और अगला शेर है कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी।
8: वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त,
7: शुक्रिया जी। और काश मैं कोई नगीना नहीं कोई पत्थर होता, काश मैं कोई नगीना नहीं कोई पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी।
8: वाह जी वाह, वाह जी वाह।
7: मसले हक से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, जिद भी करना और उसी जिद पे अड़े रहना भी।
8: बहुत खूब,
7: शुक्रिया जी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।
8: जबरदस्त।
7: और आखिरी शेर है कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर,
8: मिला है हुस्न,
7: मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जमाना देखता है।
8: वाह, बहुत खूब, सही।
7: तो ये इंतखाब था शकील आजमी का
8: जी।
7: और पढ़ते एक नगमे की तरफ,
8: नगमे की तरफ, ठीक है सर।
7: कौन सा नगमा सुनाएंगे आप?
8: आज मेरा दिल करता है कुछ गुलाम अली की आवाज़ सुने।
7: हाँ ज़रूर।
8: तो आज मैंने चुना है, चले आज मैंने ये कि गज़ल एक जो है गुलाम अली की, ये चुना है, अपना हंगामा है
7: क्यों बरपा,
8: क्यों बरपा।
7: आगे क्या

ये गज़ल कम से कम 50 वर्ष पहले की अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई है, जबकि उर्दू लुगत में वहाँ को वहाँ और यहाँ को यहाँ इस्तेमाल होता था। इस शेर में वो बात

0: वेलकम बैक सामिन। ये अली भाई, बॉलीवुड फिल्मों की सिलसिलेवार लड़ी पेश है
1: जी,
0: कि कौन सी फिल्म किस साल में आई
1: जी
0: और उसका टाइटल क्या था। तरतीब में
1: जी
0: कुछ इस तरह है कि सन 1974 में फिल्म आई रोटी,
1: ओके।
0: उसके बाद सन 1983 में फिल्म आई थी नमकीन,
1: ओके ठीक है।
0: फिर सन 1987 में मिर्च मसाला, 2005 में गरम मसाला, 2006 में सैंडविच, 2007 में चीनी कम,
1: ओके,
0: 2008 में भेजा फ्राई, 2009 में आलू चाट, 2010 में खिचड़ी, 2012 में कॉकटेल, 2012 में ही बर्फी, 2013 में मुरब्बा, 2014 में पिज़्ज़ा, 2014 में ही लंच बॉक्स, तब जाकर 2017 में टॉयलेट आई। अब देखिए कितने साल लग गए पेट साफ होने में।
1: हम खिचड़ी वगैरह सब कुछ सब हजम होता है,
0: सब हजम हो गया जी हाँ। तो सामिन ये थे कुछ फिल्मों के टाइटल और उनके साल जो जिस किस साल में बनी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पॉपुलर मेरठी साहब का एक शेर है
1: जी,
0: ये सच है कि नेक नीत कभी थी ना है ना होगी
1: ना होगी।
0: डॉक्टर सैयद शाहबुद्दीन अली कहते हैं
1: जी,
0: सैयदुद्दीन अली उर्फ पॉपुलर मेरठी
1: जी जी,
0: ये है सच कि नेक नीत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी
1: ना होगी,
0: मुझे नाज है अपने फन पर मैं जेब काटता हूँ।
1: अच्छा,
0: मुझे नाज है अपने फन पर मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी।
1: वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है,
0: अपने अपने फन की बात है,
1: बिल्कुल सही है। सच तो बोलते हैं
0: जी जी हाँ
1: हाँ।
0: वो एक साहब बस में चढ़े तो एक यंग लेडी थी लड़की, उसने
1: जी
0: उसकी तरफ देखा तो वो बड़े खुश हुए, खुश हो के उसने ऐसे मुस्करा दिए, एक्सचेंज हुए हैं
1: जी
0: स्माइल्स वगैरह, ये वो पास आ गई थोड़ा और एक दूसरे के साथ सट के खड़े हो गए बस में, और साहब तो बहुत खुश हुए कि आज तो मेरी किस्मत निकल गई
1: जी।
0: और घर जाके देखा तो पता चला कि जेब कट गई।
1: ओह नो, सही।
0: तो अपने से उम्र, हर हर काम की एक उम्र होती है,
1: बेशक होती है,
0: उम्र का
1: बेशक होती है,
0: लिहाज रखते हुए हर काम
1: जी
0: होने चाहिए
1: जी जी।
0: और इसके बाद है मनोहर राणा साहब के चंद शेर
1: जी। शायद
0: मनोहर राणा का एक अंदाज है कि वो जो उनके शायरी है माँ के प्यार पे, या माँ का जो बाप बेटे का रिश्ता है, माँ का, सॉरी बाप बेटे का नहीं, माँ बाप, माँ और बेटे का रिश्ता है
1: जी, माँ और बेटे का जी,
0: उसमें वो जो उनके ख्यालत है बहुत उम्दा होते हैं। जैसे उनका पहला ही शेर कुछ इस तरह है कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ गुस्से में होती है तो रो देती है।
1: वाह वाह।
0: ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया।
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। और अगला शेर है, किसी को घर मिला हिस्से, किसी के हिस्से में माँ दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था,
1: मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती है हुई ख्वाब में आ जाती है।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और अगला शेर है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल लिखता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है।
1: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: ये दोनों जबानों को लेकर उन्होंने ये कहा है।
1: बेशक।
0: और अगला शेर है कि मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना,
1: नहीं रोना
0: जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती।
1: वाह वाह बहुत खूब।
0: जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। और अगला शेर है उनका कि ना सुपारी नजर आई ना सरोता निकला, ना सुपारी नजर आई ना सरोता निकला, माँ के बटुए से दुआ निकली वजीफा निकला।
1: वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: और आखिरी शेर है मुनव्वराना का मेरे सामने आज, सुना है बहुत रोने से मिट्टी बैठ जाती है, सुना है बहुत रोने से
1: मिट्टी
0: बैठ जाती है, इतना मत रोना के छाती बैठ जाती है।
1: वाह वाह।
0: इतना मत रोना के छाती बैठ जाती है, जब छाती पे ज़्यादा बोझ हो जाता है तो लगता है हमारी छाती बैठ रही है
1: जी, बेशक
0: बोझ आ रहा है उस पर। और चंद शायर है कुछ इस तरह कि हम अपनी इस अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं, हम अपनी इस अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं, नफ़रत हो या मोहब्बत दोनों भरपूर करते हैं।
1: बात को
0: नफ़रत हो या मोहब्बत दोनों
1: भरपूर करते
0: हैं। डूबा हूँ जहर में पर पी नहीं रहा, मैं ज़िंदगी को सह रहा हूँ जी नहीं रहा।
1: क्या बात है।
0: और अगला शेर है, ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुसर अपने बाप से सीखा है।
1: बात को बात को
0: मैंने जिंदगी जीने का हुसन अपने बाप से सीखा है।
1: बात को
0: तो शामिल ये थे चंद अशआर और मुनव्वर राना साहब की शायरी
1: जी।
0: और नगमा है आपके सामने?
1: जी जी बिल्कुल, नगमा भी तैयार है।
0: कौन सा नगमा सुनाएंगे?
1: एक बहुत ही प्यारा सा नगमा अपना पंकज उदास का मैंने चुना है, नागजरे की दार।
0: ओ
1: बहुत ही प्यारा सा गीत है, तो आइए सुनते हैं
0: जी।
1: तो फिर मिलते हैं इस गीत के उस पर।

0: किसके साथ है?
1: सही।
0: तो ये था ऐसे एक ना वो किसी साहब ने मकान खरीद लिया
1: जी,
0: मना बनाया मकान खरीदा। मकान खरीदने के बाद उसको पता चला कि इसमें ना कोई भूत वगैरह रहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो बहुत परेशान सा घर के बाहर खड़ा, बड़े परेशानी में। तो उसको थोड़ी दूर एक और इमारत के पास एक बंदा खड़ा दिखाई दिया
1: जी।
0: उसके पास गया और बोला, कह रहा यार भाई साहब, मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, मकान खरीदा है
1: जी,
0: पर खरीदने के बाद मुझे पता चला कि इसमें तो भूत वगैरह रहते हैं
1: जी,
0: कि आपको इसके बारे में नॉलेज है कोई? कह रहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो मरे 20 साल हो गए।
1: ओले। मेरी बात सही है।
0: तो सामने इसके बाद मुझे लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम का वक्त होने को है
1: जी।
0: हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसके जो होस्ट हैं रिचर्ड दे आर विद अस,
1: इज
0: विद अस।
1: यस।
0: एंड और हम अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं
1: जी।
0: शामिन, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा
1: जी।
0: और अगले हफ्ते वीरवार जुमेरात को फिर मुलाकात होएगी आपसे आवाज़ रेडियो साउथहैम्पटन में। 3 से 4 बजे तक आपका प्रोग्राम एक बार फिर शेर व नगमा, और मैं हूँ आपको होस्ट जेरी, और मेरे साथ स्टूडियो में हैं हमारे हेडमास्टर
1: जी
0: अली बेग साहब, जो आवाज़ रेडियो के डायरेक्टर भी हैं
1: जी।
0: अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्टर साहब, हेडमास्टर साहब, हमें आपको हमारा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप
1: जी एक बार फिर बता देता हूँ, 0238198072। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0778469144। और जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिलाते चलूँ कि ये जो हादसा हमारे शहर में हुआ है उसके बाद जो है हम अपील करते हैं सारी कम्यूनिटी को कि रिमेन काम एंड स्टेडफास्ट एंड लुक आफ्टर ईच अदर। Until next time.
0: जी हाँ जी हाँ,
1: खुदा।
0: तो इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दुआ के साथ। शब खैर,
1: शब खैर, खुदा हाफिज़,
0: खुदा हाफिज़।

0: Southampton's Community Radio. Hours FM. 24 hours a day. Hours FM. Online and on air.
1: For the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
2: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
3: Hello, there's a big fire in the Enter Garden Centre in Armadale.
4: I can see a massive black plume of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
3: Hello, there's a big fire in the Enter Garden Centre in Armadale.
4: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
1: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.

0: This is Shweta Subram, and keep listening to Awaaz FM. You guys are awesome.
1: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food, and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre. Now I'm
3: starting to see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
8: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
9: This is your host from Norfolk, Alex Aller on Awaaz Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in.
10: Happy Friday on Awaaz, 99.8 FM.
9: Call me on our landline, 02381 9800 72.
10: Finish your Friday with me, the FM.
9: Call me on our landline, 02381 9800 72.
10: Finish your

0: Hours FM. 99.8 Hours FM. जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
1: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
3: All right, no problem. We're on the way.
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
5: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
6: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
7: How do you say it? A was? Or a was?
8: Assalamu alaikum, my name is Joshua, and can you a song for me and my baba? My name is Oswa and my baba name is Amir.

0: Hello there, Ali. It's Malcolm here. I've actually got Awaz FM on my digital radio now. Can you hear it playing in the background? Thoroughly enjoyed speaking to my old friend Rahia Baines this morning. Thank you very much.
1: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
2: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
3: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre. Now I'm
4: starting to see a massive black plume of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
6: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
7: All right, no problem. We're on the way.
8: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
9: We've left a bit of paper. It's that taskmaster Ali, the station manager, cracking the whip, saying it can't just be you two talking nonsense all week.
10: That's right. Yeah,
9: you need to get someone else to talk nonsense
10: exactly
9: with you.
10: With us.

0: I've had a couple of mates.
1: Shall we do some adverts and then come back?
0: Yeah,
1: right, so...
0: Cut me off there, didn't it?
2: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search Southampshire College Group.
3: Hello, there's a big fire in the end of garden centre in Hammersley.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
8: Aapki Awaz, Aapka Radio, Aapke Shahar mein Awaz FM.

0: c'est Abbas Hassan et vous écoutez bien Avaz FM.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden center in Hammersworth. I can see a massive black column of smoke.
2: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
3: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
4: All right, no problem. We're on the way.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
6: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
7: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
8: Awaz FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website awazfm.co.uk.

0: Hi, Susie Perry here. Things I love. Cars, tick. Gadgets for cars, tick. Digital radio, tick. With more digital radios and adapters available than ever before, there's never been a better time to convert your car. Any car can be converted, and if you need help, there are now registered digital radio tick mark installers at independent retailers and Halfords.
1: To find your nearest registered digital radio tick mark installer, visit getdigitalradio.com/installers.
0: If you love radio, go digital.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ

0: Yang Yingru of China.
1: Friend of the show.
0: Friend of the show. She's one of the 900 that listens. Big shout out to Yang.
2: For the finest quality halal meat and grocery, Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
3: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
4: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
4: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
8: Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom.
9: Hello you beautiful people, my name's Sunny, I host The Devil Rises Show every Saturday from 2 to 4, only on the WAZ FM 99.8, remember to tune in, don't miss it.

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
2: Hello, there's a big fire in the Enfield Garden Centre in Hammersley.
3: I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
8: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
9: Hello, I'm calling from Stockholm, Sweden. This is Elton's mother. I just want to say it's amazing to hear your voice on the radio. I'm so proud of you. I love you. I miss him. And I'm so excited to come to Southampton

0: During the break, Simon's got up on the shelf and found what I thought was some sort of green pillow or cushion. It is, in fact, a giant leprechaun's hat.
1: The things you find in the Awaz studio.
0: Now we've got this hat. Tremendous. Yes. Ali's on his way.
1: He's come to take my hat off me.
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden center in Hammersley.
3: I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: Alright, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: Alright, no problem. We're on the way.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
8: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
9: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
1: It's thunder, lightning, the way you move is frightening.
10: Thunder!
1: Gotta knock on wood! See, we can do it all on this show. We can do it all on this show.